0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी

0: ਜੰਗ ਢਲੋਆ ਹਏ ਜੰਗ ਢਲੋਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ
1: ਠਹਿਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਯੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੇ
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow, FM.
9: Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए। स्लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beat.
10: Wow, FM.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ
3: हो
2: यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1
2: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 0759315069. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932.
8: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771529779 और विजिट अस एट
11: hayatweddings.co.uk.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: वन एफएम,
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 एफएम एंड ऐप।
2: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
3: जो मंगना सी वो तो मिल गया।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
5: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
5: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
5: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

रही, तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: Culture with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats. Wow,
8: FM. Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
6: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को खुशामदीद। जैसे कि लिसनर्स आप सभी जानते हैं, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। सो द लिसनर्स, हमेशा से कोशिश यही की जाती है कि रेडियो फजा 97.1 FM और डैब वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, और फिर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे ट्रैक्स जो हमारे सभी लिसनर्स सुनना चाहते हैं। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही खूबसूरत ट्रैक्स, साथ ही साथ कुछ मौजूदात गुफ्तगु। सो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगु का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज थोड़ा सा शानदार होना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होना चाहिए, तो उसके लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सो वेल लिसनर्स, पूरी कोशिश तो यही की जाएगी कि जो सब आप सुनना चाहते हैं या जो आपको है पसंद, वही हम बनाएं अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा। सो फिलहाल मेरे पास कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मौजूद, तो मैं एक ऐसा सॉन्ग प्ले करने जा रही हूं जो कि पर्सनली मुझे बेहद पसंद है। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

0: तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक? सो इस ट्रैक के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो द लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
1: कई ख्वाब देखे हैं मैंने, तेरी सांसों से जुड़े हर दिन को मैंने इतना जिया है, बस जो दिल की बात तुमसे जुड़ी है तुम तक पहुंचा दो। जाने कैसे
2: ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो दिखता है मोमेंट वैसा होता नहीं।
3: लेट्स हैव अ ग्रेट नाइट एंड यू मेक अ विश।

0: एक गलत फहमी की बुनियाद पर आप तो शादी जैसे ताल्लुक तोड़ ही
1: जाने ये तन्हाई ले जाएगी अब कहाँ।
2: करीब होते हुए भी तुम मुझसे कितना दूर हो।
1: हाथों में तेरे लिखा नाम एक अजनबी का।
3: तुम्हारी वजह से डिवोर्स फाइल

हार्ट से वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेजबान आज है ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग। वेल कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक? सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा ट्रैक्स को कुछ इसी तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए तो उसके लिए आप हमें लाइव बता सकते हैं। अच्छा जी, तो किस तरह से आपने हमें बताना है कि आपका कौन सा पसंदीदा ट्रैक हम अपने इस शो में शामिल करें, उसका सिंपल सा तरीका मैं आप सभी से शेयर करती चलती हूँ। सो आपको डायल करना है 01157100971। ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर यानी कि मेरा और आपका रابطے का नंबर। ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि एक जरिया है हमारे कम्युनिकेशन का। सो ना सिर्फ आप इस नंबर के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूजिक है पसंद, साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं या फिर गुफ्तगू का मौजू हम किन चीज़ों को बनाएं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको कर रही है बॉदर या डिस्टर्ब तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस सो आपके हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि रेडियो फजा 97.1 FM ही ये क्लेम करता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपके साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है और एंटरटेनमेंट का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। सो जी, अब बात करते हैं जरा उन लिसनर्स की जो कि ड्राइव कर रहे हैं या फिर अभी अभी ड्राइव पर रवाना हुए हैं। सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफर ये जर्नी बन जाए खूबसूरत मेमोरेबल और यादगार, सो उसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली फजा डैप के थ्रू हमारे इन खूबसूरत सी आवाजों को ट्यून कर सकते हैं और साथ ही साथ इस नंबर के थ्रू आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहिए रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी मालूमात तो हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट है www.radiofaza.com.uk। सो इसे लॉग इन करें और इसी तरह से हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने रहें। सो द लिसनर्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले कि बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सो जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों तो इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखा करें कि आपकी ज़िंदगी से आपके चाहने वालों की भी ज़िंदगी मुंसलिक है। सो अगर आप कोई भी गलत स्टेप उठाते हैं या फिर आप ड्राइव करते करते रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई भी स्टूपिडिटी करते हैं, सो हो सकता है कि आपके किसी अपने किसी चाहने वाले या किसी प्यारे की ज़िंदगी भी हो मुतासिर। तो इन तमाम सारी चीज़ों का ख्याल हमने मैंने बल्कि हम सभी ने मिलकर रखना है, आप सभी रखना है, तो खुद के लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए सोचिए। और अगर आप अभी ऑफिस पहुंच चुके हैं या फिर आप ऑफिस का काम करते करते थोड़ा सा बेजार या थका थका महसूस कर रहे हैं तो आप ही के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आइए एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और हो सकता है कि इस ट्रैक से आपकी थकन दूर हो जाए और जो आपका मूड काफी हद तक बोरिंग हो चुका है वो भी रिफ्रेश हो जाए। सो इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

वेल लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं शो का अगला सेगमेंट. सो नेचर, आप सबने कभी गौर की है नेचर के बारे में? तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना नेचर से ही रिलेटेड थोड़ी सी बात करें. सो कुदरत सिर्फ हमारे आसपास का माहौल ही नहीं बल्कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल कीमती तोहफा है. सो आज के शॉर्ट से सेगमेंट में हम बात करेंगे ऐसे नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जो हम सबको काफ़ी हद तक हैरान कर देगा, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स अबाउट नेचर जो हो सकता है आप ना जानते हो, या फिर अगर आप उनको जानते हो तो उन तमाम से चीज़ों से उस तरह से आशना ना हो. सो वो तमाम तर फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करूँगी आज इसी सेगमेंट में. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट से. सो क्या आप जानते हैं कि वुड वाइड वेब क्या होता है? सो आपने डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स, वेब सीरीज, इस सब के बारे में तो काफ़ी जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नेचर की वुड वाइड वेब के बारे में जानने की कोशिश की है? आई थिंक सो कि नहीं की होगी. सो आइए आज आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करते हैं. सो बेसिकली इस वेब में होता ये है कि जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं नेचर की या सिंपली किसी गार्डन या फिर किसी फॉरेस्ट की. सो फॉरेस्ट में ये होता है कि बहुत सारे ट्रीज़ एक साथ होते हैं. अब हम लोग क्या समझते हैं कि हर ट्री दूसरे ट्री से अलग है, और जिस तरह से हर तरह का जो प्लांट है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, लेकिन दर हकीकत असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. तो बेसिकली ये ज़मीन के नीचे एक मशरूम के नेटवर्क के जरिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो बज़ाहिर दिखने में हमें ऐसा लगता है कि हर प्लांट इंडिविजुअली ग्रो करता है, इंडिविजुअली अपने प्लांट जनरेट करता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एंड ईच एंड एवरीथिंग. बट हकीकत में होता ये है कि इनका एक नेटवर्क सिस्टम होता है जो कि ज़मीन के अंदर एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़े रखता है और इनके बीच रबते का एक जरिया प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली इस नेटवर्क के थ्रू क्या क्या काम सर अंजाम होते हैं. सो अगर एक दरख्त थोड़ा सा बीमार हो जाए, या जस्ट इन केस होता है ना, जिस तरह इंसानों में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं. सो अगर किसी भी एक दरख्त को कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये नेटवर्क सिस्टम इसको वो तमाम तरह न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है जो इसकी ज़रूरत होते हैं. सो इस तरह से तमाम तर प्लांट्स खुद ब खुद हील हो जाते हैं और हमें उनके लिए उस कदर एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती. लेकिन नेचर हीलिंग टिप्स भी कुछ होती हैं जिनके ज़रिए से आप अपने आसपास के इर्द गिर्द के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनका नेचुरली ख्याल रख सकते हैं. सो ये थी हमारी फैसिनेटिंग टिप्स. आई थिंक सो कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा और ना ही आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानते होंगे. सो कैसा लगा आपको कुछ डिफरेंट, कुछ हट के, कुछ अलग सा जानकर? क्योंकि मैंने ये रिसर्च इसलिए की क्योंकि आई फील लाइक मैं अक्सर औकात जब भी कभी किसी गार्डन में जाती थी या फिर बाज़ औकात बहुत सारी ऐसी जगहों में जो कि बहुत वीरान होती थी, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन डेट पॉप्स अप इन माय माइंड वो ये कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, तो इन प्लांट्स का तो कोई ख्याल नहीं रखता होगा, तो ये प्लांट्स खुद ब खुद किस तरह से इतने हेल्दी हैं और इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं. सो देन आई स्टार्टेड दिस रिसर्च और फिर इस रिसर्च के बाद मुझे ये तमाम तर फैक्ट्स मालूम हुए. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम तर फैक्ट्स को डीवा डायलॉग का हिस्सा बनाया जाए. सो डियर लिसनर्स, ये तो हो गए कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स. अब से बात करते हैं कुछ नेचर हीलिंग टिप्स की. सो किस तरह की हीलिंग टिप्स आप इस्तेमाल करके अपनी नेचर को खूबसूरत बना सकते हैं और प्लांट्स को भी हेल्दी बना सकते हैं? सो अगर आप चाहते हैं कि आप नेचर से हील हों, सो उसके लिए आपको ये 2-3 स्टेप्स हैं जो डेली बेसिस पर फॉलो करने हैं. एंड ट्रस्ट मी, जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप खुद को नेचर के बहुत करीब पाएंगे. सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट काम करना है वो ये है कि रोज़ाना आपने अपने इस मसरूफ तरीन दिन में से 5-10 मिनट निकालने हैं, और इस 5-10 मिनट में आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना बल्कि किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ खूबसूरती हो, नेचर हो, ग्रास हो. वहाँ आपने 5-6
कदम चलना है। सो जब डेली बेसिस पर आप 5 से 6 कदम चलेंगे और एक खूबसूरत जगह, एक ऐसी जगह जो आपको नेचर के करीब करेगी, तो आप काफ़ी हद तक रिफ्रेश फील करेंगे, आपको सुकून महसूस होगा और आप खुद को नेचर के करीब पाएंगे। इससे क्या होता है, अच्छा इसके बेनिफिट्स भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है। सो अगर आपको कोई भी किसी किस्म की एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर फ्रस्ट्रेशन है, तो वो तमाम तर फैक्ट्स इस छोटी सी एक्टिविटी से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। सो लाजमी इस एक्टिविटी को करिएगा। सो अगर देखा जाए तो नेचर के पास हर तरह की बीमारी का सलूशन मौजूद होता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को छोड़कर हमेशा मस्तूई चीज़ों की तरफ भागते हैं। सो ये एक छोटी सी सिंपल सी बेसिक सी एक्टिविटी है, अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्दी रहने में मदद करती है, साथ ही साथ हर तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम कर देती है।

सो चलिए आइए आपसे मैं शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से डेली एक इको चैलेंज करके अपने नेचर को खूबसूरत बेहतरीन बना सकते हैं। सो आपका चैलेंज कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान। सो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने घर के इर्द गिर्द या फिर अपनी सोसाइटी, अपने एरिया को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना है। और अगर आपको अपने गिर्दोनवा में कोई ऐसी जगह मिलती है जो कि नेचर के करीब हो या फिर खूबसूरत ग्रीनरी हो, तो आपने वहाँ जाकर डेली बेसिस पर एक परिंदों को पानी देना है या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी है जिससे आप नेचर के थोड़ा करीब हो। इससे यह होगा कि आप ना सिर्फ नेचर के करीब होंगे बल्कि नेचर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में भी मदद करेंगे। इसी तरह से हम कुदरत से जुड़े रह सकते हैं। सो कुदरत से जुड़े रहिए क्योंकि ये ना सिर्फ आपके माइंड को बल्कि आपकी या ओवरऑल बॉडी को भी हील करता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। सो डियर लिसनर्स, आज के इस छोटे से सेगमेंट में ये कुछ इम्पोर्टेंट और यूनिक फैक्ट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। आई होप आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा क्या आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले जानते थे, क्या आपको मालूम था कि जिस तरह से इंसानों का एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है ठीक उसी तरह से प्लांट्स का भी होता है। सो इस तरह की मजीद मज़े की यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, www.radiofaza.com.uk इसको ट्यून करते रहना है और मैं डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ इसी तरह की यूनिक और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। सो वेल लिसनर्स, डीवा डायलॉग में अब हमने बात कर ली है काफ़ी हद तक नेचर की एंड आई होप कि अब आपको मालूम हो चुका है कि किस तरह से नेचर वर्क करती है और किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को कर सकते हैं दूर। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। सो ये वो ट्रैक है जो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने अभी अभी हमें रिकमेंड किया है। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने लिसनर्स को कभी भी निराश ना करें। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: Hello?

0: कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। टेल द लिसनर्स टीवा डायलॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी की मेजबान आरजे ज़ैनब फातिमा। और जो लिसनर्स देखते देखते आपको मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा मुकम्मल। सो इस एक घंटा मुकम्मल होने पर मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हो या फिर गुफ्तगू बहुत ही अच्छी चल रही होती है, तभी ऐसा होता है कि आप नॉन स्टॉप बातें करते चले जाते हो लेकिन आपको वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। सो दे लिसनर्स, अगर आप भी इसी तरह से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रिकमेंडेशंस को, आपकी कीमती राय को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, सो उसके लिए आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं, अपनी कीमती राय शेयर कर सकते हैं। सो जल्दी से डायल कर लीजिए ये नंबर, और नंबर डायल करने के बाद हमें ये बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। सो वेल लिसनर, जैसे कि आप सभी को मालूम कि हमारा ये जो शो है डीवा डायलॉग, स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है तमाम तर हमारी डीवाज के लिए, हमारी उन फीमेल्स के लिए जो कि डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, घर में काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं या फिर हैं वो वर्किंग वूमेन। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता खुद की केयर करने का या फिर अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज के लिए। सो आपकी इन तमाम दर समस्याओं को हम दूर करते हैं अपने इस शो के थ्रू डेली बेसिस पर, आपको अच्छी अच्छी सी ऑर्गेनिक टिप्स बता के साथ ही साथ मज़ेदार सी फूड सीरीज के साथ। सो दे माई लवली डीवाज, अगर आप कर रही हैं इस वक्त कोई भी काम तो ज़रा काम को कर दीजिए थोड़ी देर के लिए साइड पे, क्योंकि आज भी मैं हमेशा की तरह लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसी ही ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्यूटी टिप्स। सो ये ब्यूटी टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देंगी, साथ ही साथ इनकी बेस्ट बात ये है कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, सो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। सो द लिसनर्स, हमेशा मैं जब भी किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाती हूँ या फिर कहीं पर भी जाती हूँ, इवन के वो फ्रेंड्स हैंग आउट हो या फिर कहीं भी, सो मोस्टली लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे नेल्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। सो मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे नेल्स कैसे ग्रो करती हूँ और क्या नेल्स टूटते नहीं हैं जब डेली बेसिस पर मैं घर का काम करती हूँ या फिर कोई भी काम करती हूँ। सो मैं जब भी किसी को ये बताती हूँ कि ये नेचुरल नेल्स हैं, यानी कि ये नेल्स मेरे खुद के अपने हैं, सो बहुत सारे लोग काफ़ी हद तक हैरान हो जाते हैं और स्टिल वो दोबारा मुझसे पूछते हैं कि वाओ इतने लंबे नेल्स कैसे हो सकते हैं, हम तो जब भी नेल्स ग्रो करते हैं तो हमारे नेल्स टूट जाते हैं या फिर ज़्यादा अरसा लंबे नहीं रहते। सो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी सभी डीवाज से इसकी भी रेमेडी शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप अपने नेल्स को नेचुरली स्ट्रांग बना सकते हैं और साथ ही साथ आप उनको थिक बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी नेल्स अक्सर जब बहुत लंबे हो जाते हैं तो वो हल्के से येलोइश हो जाते हैं। सो इन तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन है मेरे पास, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी वो टिप जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। सो अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे कर दीजिए स्किप और आकर ज़रा प्रोग्राम की तरफ ध्यान दें। सो द लिसनर्स, इस रेमेडी के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स है जिसको आपने अपने नेल्स पर अप्लाई करना है और एक सिंपल सी हैंड केयर रूटीन है जिसे आप अगर डेली बेसिस पर एक से दो मिनट निकाल कर लेते हैं तो आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, साथ ही साथ आपके नेल्स भी ग्रो होंगे और आपके नेल्स नेचुरली थिक होंगे। सो सबसे पहले मैं आपसे रेमेडी शेयर कर देती हूँ एंड देन फिर हम बात करते हैं हैंड केयर रूटीन के बारे में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल्स नेचुरली ग्रो करें और विद इन अ वीक बहुत ही जल्दी ग्रो करें, सो इसके लिए आपको ले लेना है लहसुन, ठीक है। लहसुन को आपने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने उसमें स्क्वीज़ करना है 1 लेमन। सो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपका ये अच्छा सा पेस्ट हो जाएगा तैयार।
अब आपने क्या करना है, इसे डेली जब भी कभी आप फ्री हो जाएं या फिर आप अपने तमाम तक काम काज मुकम्मल कर चुके हैं, सो आपने इस पेस्ट को अपने नेल्स पर आराम से रब करना है और 5 से लेकर 7 मिनट तक इसे लगे रहने देना है। सो 5 से लेकर 7 मिनट के बाद आप अपने हाथ वॉश कर सकते हैं या फिर आप कोई भी जो काम कर रहे हैं वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली लेमन क्या काम करता है, लेमन बाज़ुकात अक्सर लोगों को नेल फंगल हो जाता है जिसकी वजह से उनके नेल्स बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाते हैं और ग्रो नहीं करते और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। सो लेमन क्या करता है कि उस फंगस को रिमूव करता है, साथ ही साथ लहसुन में पाए जाते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस जो आपके नेल्स को नेचुरली ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। सो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने नेल्स पर अप्लाई करेंगे, सो यू विल सी के विद इन अ फ्यू वीक्स आपके नेल्स काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे, साथ ही साथ वो बहुत मजबूत होंगे। फिर आप जो भी कोई भी काम करें, कोई हैवी लोड की चीज उठाएं या कुछ भी ऐसा, आपके नेल्स बिल्कुल भी नहीं ब्रेक होंगे। सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट ऑर्गेनिक ब्यूटी टिप। सो आपने इसे पूरा वीक अप्लाई करना है, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करेंगे तभी आपके नेल्स थिक होंगे, तभी आपके नेल्स जल्दी ग्रो करेंगे। सो लिसनर्स, ये तो हो गई वो टिप जिससे आपके नेल्स जल्दी ग्रो करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं हैंड केयर रूटीन के बारे में। सो कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जिनको आप अगर आप फॉलो करें तो आपके हैंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके हाथ बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। सो सबसे पहले तो आपको करना कुछ यूं है कि आपको स्क्रबिंग लाजमी करनी है। जिस तरह से हम अपने फेस को जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने हाथों को और अपने पैरों को भी जेंटली एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत होती है। सो आपने वीक में 2 से 3 मरतबा कोई भी अच्छा सा स्क्रब यूज़ कर लेना है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आप वो स्क्रब यूज़ करें जिसके अंदर जो एंजाइम पार्टिकल्स हैं वो बहुत थिन हो, बिल्कुल भी थिक ना हो। अदरवाइज हो सकता है कि आपके हाथों पे हार्श रिएक्शन करें या फिर आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएं। सो ऐसा स्क्रब जिसके अंदर थिन पार्टिकल्स हैं उससे आपने अच्छी तरह से वीक में 2 से 3 मरतबा स्क्रबिंग कर लेनी है। ये क्या करेगा, आपके हाथों की पैरों की डेड स्किन को रिमूव कर देगा, हाथों को खूबसूरत और सॉफ्ट बनाएगा। सो इसी तरह से ये तो हो गए हाथों की स्क्रबिंग, अब बारी आ जाती है नेल्स की। सो अगर आप चाहते हैं आपके नेल्स हेल्दी हों तो आपको वीक में 2 से 3 मरतबा नेल स्क्रबिंग भी करनी है। अब किस तरह से करनी है, आप कोई भी टूथब्रश या उसी साइज का कोई भी छोटा सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिससे आपने अपने जब भी कभी आप हाथ वॉश करते हैं तो आपने उस ब्रश को हल्के हाथों से अपने नेल्स पर ब्रश कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके नेल्स की स्क्रबिंग हो जाएगी। और अगर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि नेल्स की अपर लेयर काफ़ी हार्ड हो जाती है या फिर कलर डिस्कलरेशन हो जाती है, सो वो सब काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल्स अच्छे ग्रो करें या फिर हेल्दी और लॉन्ग हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीक में 2 से 3 मरतबा फाइलर से अपने नेल्स की शेप को ठीक करें। इससे ये होता है कि अगर आपका नेल कोई ब्रेक हो रहा होता है या फिर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो वो फाइलर की वजह से रिमूव हो जाता है और नेल काफ़ी हद तक नेचुरली लॉन्ग रहते हैं। सो नेल्स को फाइल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ ही साथ आप क्यूटिकल्स को भी रिमूव कर दें क्योंकि क्यूटिकल्स बाज़ औक़ात आपके नेल्स को लंबे होने में मदद नहीं देती और क्यूटिकल्स की वजह से आपके नेल्स जल्दी ग्रो नहीं कर रहे होते। सो क्यूटिकल्स को कट कर दें, नेल्स को वीक में 2 से 3 मरतबा फाइल कर लें। और साथ ही साथ जब आप ये स्टेप अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद आता है हमारा एक हीलिंग स्टेप। सो उस हीलिंग स्टेप में आपने रात को सोने से पहले जिस तरह से आप अपने फेस की केयर करते हैं, अपने फेस की केयर करते हैं, अपने बालों की केयर करते हैं, ठीक उसी तरह से सोने से पहले आपने क्या करना है, वैसलीन अपने नेल्स पर आराम से रब कर लेनी है। वैसलीन आपके नेल्स को हील करेगी और इससे आपके नेल्स नेचुरली स्ट्रांग होंगे। सो जी माई लवली डिवाइस, ये थी आज की हमारी फर्स्ट ऑर्गेनिक टिप। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और अब किसी की भी नेल से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है जो कि हमेशा लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक साथ आपकी तमाम तरह की क्यूरीज को दूर कर दिया जाए। वेल, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो 01157100971 आप इस नंबर पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई मेक श्योर कि आपके तमाम दर सवालों के ऑनेस्टली जवाब दिए जाएँ।
سعودی لازمی اس ریمیڈی کو اپلائی کیجیے گا اور یوز کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک مجھ سے شیئر کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کیا جو ریمیڈیز مجھ پر ورک کرتی ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ پر ورک کر رہی ہیں یا نہیں. سو دی لسنرز, کافی ہو گئی بیوٹی اور ٹپس کی بات, اب ذرا سنتے ہیں ایک عدد خوبصورت سا ٹریک. سو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو کس طرح کا ٹریک سننا پسند ہے. تو فی الحال کے لیے تو میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹریک آیا ہوا ہے جو کہ ہے عاصم اظہر کی آواز میں. سو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم پاکستانی میوزک کی بات کریں تو لیٹ 19th سینچری میں پاکستانی میوزک کافی حد تک بہتر نہیں تھا, اور لوگ ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ پاکستان انڈسٹری میوزک کے حوالے سے ہے تھوڑی سی پیچھے. لیکن اب میوزک بھی کافی ریولیوشن آئی ہے, کافی ینگ کمرز آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھے سنگنگ کی ہیں, اور اب کمپٹیشن کافی حد تک ٹف ہو چکا ہے. سو جی فی الحال سنتے ہیں یہ خوبصورت سا عاصم اظہر کی آواز میں ساؤنڈ ٹریک. اس ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر میں آپ سے شیئر کروں گی مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ٹپس.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं चलो राज की सोलसी के साथ साथ। अभी जो है वो प्रोग्राम में मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद थी, लेकिन उससे पहले इतना बता देते हैं कि जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार बड़ा ही आसान सा है, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजल 97.1 एफएम के नाम से, और इसके अलावा गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन उसी के साथ इतना बता देते हैं कि प्रोग्राम में आपकी मर्जी के ट्रैक शामिल किए जाएंगे। कोई ट्रैक किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहे तो मुझे बताइएगा, या फिर कोई खूबसूरत सा पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आई एम ऑलवेज हेयर विद यू, बस दो घंटे के लिए, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है, और वक्त मेरे और आपके दरमियान तकरीबन दो घंटे का होता है। अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, फिर मेरे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक का समय आ जाएगा और फिर आपकी फरमाइश है वो बीच में आधी अधूरी रह जाएगी। सवाल ये सुनते हैं इस ट्रैक को पढ़ेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फजल 97.1 एफएम एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाचारों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। बोलो, आज मेरा दिल है कि क्यों ना कि कुछ ट्रैक्स ही प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ, क्योंकि उनका फरमाइश कुछ ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी आकर जो है वो आपके ही भी आपकी भी फरमाइश को पूरा कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा साथ बहुत पसंद आ रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक।
1: कितनी तेरा
0: फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी समातों को रेडी फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलराज की। सोलो जी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है खत्म, अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे कल सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस।

0: साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉकअवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
1: You are listening 97.1 FM.

परेशान हाला परेशान होना छोड़ दीजिए, अपने हाल पर रहम कीजिए और मेहनत कीजिए, एक दिन कामयाबी आपके ज़रूर कदम चुमेगी। याद रखिए कि खामोशी की जुबान में दर्द छुपा होता है, लब खामोश मगर दिल रो रहा होता है, इसलिए कभी भी ऐसे हालात में जिन हालात में आपके लब खामोश हों और दिल रो रहा हो तो परेशान होने की बात नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखिए और कुदरत आप पे मेहरबान होगी।

आदत की परवाह कीजिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं और वो हमें सिर्फ एक ऑप्शन समझ रहा होता है। इसलिए किसी की आदत मत बनिए और ना ही किसी के लिए ऑप्शन बनिए। ऐसे बनिए कि आपका इंतखाब किया जाए, बल्कि ऐसे बनिए कि आप लोगों का इंतखाब करें कि किसको चुनना है और किसको रिजेक्ट करना है।

फजा 97.1 FM पे इस वक्त वक्त हुआ है खूबसूरत सी प्ले लिस्ट प्ले करने का. सुनते रहिए फजा 97.1 FM, सुनिएगा और सर दुनिएगा.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 97.1 रेडियो फजा और मैं हूँ ज़फ़ेर। आज मिशन बहुत सादा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, क्योंकि ज़िंदगी में मसाइल सबके पास हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कुछ लोग मसाले के साथ चाय पीते हैं, कुछ लोग मसाले को ही चाय पिला देते हैं। अच्छा बताइए, क्या कभी आपने गौर किया कि हम पाकिस्तान में कुछ जुमले बड़े अजीब हैं? मसलन घर में कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, जवाब बस इधर ही। अब इधर कहाँ पता नहीं, लेकिन पूछने वाले को जवाब मिल गया। फिर मैं पूछते हैं खाना खाओ, आप कहते हैं नहीं। 5 मिनट बाद अम्मी खाना क्या बना, और फिर अम्मी का जवाब कुछ नहीं, तो तुमने तो कहा था खाना नहीं। और एक जुमला तकरीबन हर घर में मशहूर है, बस 5 मिनट। ये 5 मिनट पाकिस्तान की तारीख के सबसे लंबे 5 मिनट है। कोई कहे कि 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और आप जानते हैं वो अभी घर से निकला भी नहीं। अब आप भी बताएं आपके घर में सबसे मशहूर जुमला कौन सा है, क्या है? बस 5 मिनट, या पैसे कहाँ से आएंगे, या फ़ोन रखो और सोचो, या पहले काम करो फिर मोबाइल। आपके घर में कौन सा जुमला सबसे ज़्यादा बोला जाता है? मैसेज करें FM 97.1 रेडियो फजा पर। चलिए अब जरा दिलचस्प सवाल की तरफ आते हैं। फर्ज करें आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिल जाए, तो आप क्या बदलेंगे? नौकरी, शहर, मोबाइल, रूटीन, या फिर अपनी नींद का टाइम? कुछ लोग कहेंगे मुझे एक दिन के लिए मोबाइल बंद करना है, लेकिन 2 घंटे बाद खुद मोबाइल तलाश करेंगे कि मेरा फोन कहाँ है। और कुछ लोग कहेंगे मुझे एक दिन के लिए अमीर बना है। भाई एक दिन क्यों, अगर मौका मिल रहा है तो सीधा मुस्तकिल। चलिए आज एक दिलचस्प सवाल कॉलर से भी पूछते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का सदर वजीर आजम बना दिया जाए, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? लेकिन ध्यान रहे कि वादे ऐसे ना करना कि अगले दिन आवाम के भाई अब वो वादा पूरा भी करो। अच्छा भाई, एक इंतहाई संजीदा कोई मसला, चाय पाकिस्तान में चाय सिर्फ चाय नहीं है, चाय खुशी में है, गम में है, मेहमान आए तो है, मेहमान ना आए तो भी है, सर्दी में है, गर्मी में, और सबसे बड़ी बात चलो एक कप चाय पीते हैं। इसमें बाज़ औक़ात एक 2 घंटे की मीटिंग का आगाज़ भी होता है। आप चाय कैसे पीते हैं? दूध पत्ती, ग्रीन टी, कड़क चाय, इलायची वाली, या वो चाय जिसके बारे में खुद बनाने वाला भी कहता है पता नहीं कैसे बनी है? अब बात करते हैं दोस्तों की ज़िंदगी में। दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन दोस्त भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो आपको मुश्किल वक्त में कहते हैं फिक्र ना करो मैं आपके साथ हूँ, और दूसरा वो जो मुश्किल में कहते हैं भाई ये काम था। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके पास पैसे होने पर बहुत करीब होते हैं, और जैसे ही आप कहते हैं यार मेरे पास आज पैसे नहीं, उनका फ़ोन भी खामोश, उनका व्हाट्सएप भी खामोश, और शायद दोस्ती भी खामोश। लेकिन सच्चा दोस्त वो है जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो, जिसके साथ आप खामोश बैठें तब भी अजीब महसूस ना हो, जिसके साथ हंस सकें, जिसके साथ अपनी परेशानी बता सकें, और जिसके साथ बैठकर वक्त का पता ही ना चले। अब आज का एक खूबसूरत सा सेगमेंट है, दोस्त को एक लाइन अपने किसी खास दोस्त के सिर्फ एक लाइन में, मसलन यार तू है तो ज़िंदगी आसान लगती है, या बहुत अरसे से मुलाकात नहीं जल्द मिलते हैं, या फिर भाई चाहे मेरी तरफ से, और अगर दोस्त ने आपके पैसे वापस नहीं किए तो भाई दोस्त अपनी जगह, पैसे अपनी जगह। अब जरा मोबाइल की बात करते हैं। वक्त जब हम कहते थे कि आज पता नहीं मौसम कैसा है, अब मोबाइल खोलो, मौसम भी मालूम, खबरें भी मालूम, दोस्त कहाँ हैं वो भी मालूम, कौन ऑनलाइन है वो भी मालूम। और फिर हम खुद कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, फिर 5 मिनट बाद उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं। सोशल मीडिया ने हमें वाकई अजीब बना दिया, हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करने लगते हैं, हालांकि हमें नहीं मालूम कि सामने वाले की तस्वीर के पीछे उसकी असल ज़िंदगी कैसी है। लेकिन मोबाइल को अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल ना करने दें। अभी वक्त हुआ है खूबसूरत सॉन्ग का, सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 97.1 रेडियो फजा। हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की उन छोटी छोटी एहतियातों की जो हमें बड़े हादसा से महफूज रख सकती हैं। हम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि बस जल्दी से निकल जाता हूं, लेकिन भाई वो चंद सेकंड बचा कर हम कहां पहुंचेंगे? सुर्ख बत्ती है तो रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो पैदल चलने वाले को रास्ता देना है, मोड़ काटते हुए रफ्तार कम करनी है और रात के वक्त खासतौर पर मोहतात रहना है। एक और अहम बात, अगर आपके आगे कोई स्कूल वैन, रिक्शा या बस खड़ी है तो फौरन उसके पास से तेजी से ना निकलें। कोई हो सकता है कोई बच्चा अचानक सड़क उबर कर रहा हो। ड्राइविंग सिर्फ अपनी हिफाजत का नाम नहीं, सड़क पर मौजूद दूसरे इंसान की जिंदगी भी हमारे

अब सर बच्चों की बात करते हैं, और मैं वालदैन से भी एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बच्चों को सिर्फ ये ना कहें कि सर अजनबी से बात नहीं करनी है, उन्हें यह भी सिखाएं अगर कोई उन्हें गैर आरामदेह महसूस करवाए तो फौरन अपने वालदैन उस्ताद या किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। बच्चों को एतमाद दें कि अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे, डर लगे, अजीब महसूस हो तो हमें ज़रूर बताना, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। जुमला बहुत अहम है क्योंकि बाज़ बच्चे डर की वजह से बहुत बातें छुपा लेते हैं, और बच्चों की हिफाजत के लिए के हवाले से एक ज़रूरी आगे बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक आसान अल्फाज में समझाना चाहिए कि वो लम्स जो महफूज मुनासिब और बच्चे गुड टच की देखभाल या मदद के लिए हो, मसलन वालदैन का प्यार करना या किसी ज़रूरत के वक्त मदद करना, जबकि बैड टच वो लम्स है जिससे बच्चा बे आराम, खौफजदा या खैर महफूज महसूस करे, या कोई शख्स बच्चे के जिस्म के निजी हिस्सों को मुनासिब तरीके से छूने की कोशिश करे। बच्चों को ये भी सिखाएं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है, अगर कोई ऐसा लम्स करे जो उसे पसंद ना हो तो बच्चा नहीं कह सकता कि पीछे हट सकता है, वहाँ से दूर जा सकता है और फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बता सकता है। और सबसे अहम बात, अगर कोई शख्स बच्चे से कहे ये बात किसी को नहीं बतानी, तब भी बच्चे को ज़रूर बताना चाहिए। वालदैन बच्चों को सिर्फ नसीहत ना करें, उनके साथ ऐसा ताल्लुक बनाएं कि बच्चा मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपके पास आए। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि कहीं मत जाइएगा, फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपसे मुख्तलिफ बातों के साथ और दीगर उमूर के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक। अब ज़रा मोटरसाइकिल वाले दोस्तों से बात हो जाए भाई। हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं होना चाहिए, हेलमेट सर की हिफाजत के लिए होता है, और अगर पीछे बच्चा बैठा है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है। तेज़ रफ्तारी, गलत ओवरटेकिंग, मोबाइल इस्तेमाल करने या चंद सेकेंड की जल्दी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, ख़ासतौर पर स्कूलों, बाजारों और आबादी वाले इलाकों में। रफ्तार कम रखें, कोई बच्चा अचानक सड़क पर आ सकता है, कोई बुजुर्ग सड़क पार कर सकता है, कोई शख्स सामने से निकल सकता है। सड़क पर हमेशा ये सोच कर चलें कि सामने वाला गलती कर सकता है, इस सोच से हादसा कम होते हैं। एक छोटा सवाल, अच्छा समीन आपसे एक सवाल है, आपके ख्याल में हमारे इलाकों में ट्रैफिक के हवाले से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तेज़ रफ्तारी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, या हेलमेट ना पहनना, या सीट बेल्ट ना लगाना, गलत जगह से ओवरटेक करना, ट्रैफिक सिग्नल के खिलाफ वर्जी? अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपकी राय शायद किसी दूसरे शख्स को अपनी गलती का एहसास दिला

एक और अहम बात कि सड़क पर सिर्फ नौजवान नहीं होते, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने मुश्किल हो तो चंद सेकंड रुककर मदद कर दें, लेकिन मदद करते हुए भी पहले उनकी इजाज़त लें। इसी तरह छोटे बच्चों, माजूर अफराद और पैदल चलने वालों का खास ख्याल रखें। एक महज़ब माशरे की पहचान सिर्फ बड़ी इमारतें नहीं होती, बल्कि ये भी होता है कि कमज़ोर मोहताज इंसान हमारे दरमियान कितना महफूज और महसूस कर सकते हैं। और अगर मौसम ख़राब हो, बारिश हो, धुंध हो, सड़क फिसल रही हो तो रफ्तार मज़ीद कम कर दें, हेडलाइट्स दुरुस्त करें, फासला ज़्यादा रखें, और अगर नज़र बहुत कम आ रही हो तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कभी कभी मंजिल पर 10 मिनट देर से पहुंचना ज़िंदगी भर के नुकसान से कहीं बेहतर होता है। देखा आपने, हमने प्रोग्राम शुरू किए थे काम से जुमराती शाम और बाद चाय से निकली ट्रैफिक तक पहुंची, वहां से बच्चों की हिफाजत तक, फिर गुड टच और बैड टच, फिर मोबाइल सेफ्टी, और यही तो जिंदगी है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पर हम आमतौर पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर हम सिर्फ थोड़ा सा ख्याल कर लें तो बड़े से बड़े हादसा से हम बच सकते हैं। एहतियात का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त खौफज़दा रहें, एहतियात का मतलब खुश रहें, जिंदगी गुजारें, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आप भी हमारे साथ हैं तो अपने घर वालों को भी ये प्रोग्राम सुनवाइए, खास तौर पर अपने घर में बच्चे हैं तो आज उनके साथ बैठकर एक बात ज़रूर करें। अगर कोई तुम्हें कभी ऐसा लम्स करे जो तुम्हें बुरा लगे तो फौरन बताना, और बच्चे से भी कहें हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ये जुना बच्चे के लिए बहुत बड़ा तहफ़ बन सकता है। यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी म्यूज़िक ब्रेक, म्यूज़िक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1।

तो दोस्तों बात चल रही थी एहतियात की, और एक बात वाकई बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ खतरात से डराएं नहीं बल्कि उन्हें समझदार और पर एतमाद बनाएं। बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कभी कोई उसके साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो जिसमें उसे खौफ महसूस हो तो वो शोर मचा सकता है, वहाँ से दूर जा सकता है और किसी काबिल एतमाद बड़े से फ़ौरन मदद ले सकता है। और अपने वालिदैन के लिए एक बात ख़ास तौर पर, बच्चे की बात सुनकर फ़ौरन से डांट ना दें, पहले सुने समझें फिर फैसला करें, क्योंकि कभी कभी बच्चे को मसले से ज़्यादा इस बात का खौफ होता है कि अगर मैंने घर में बताया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। इस खौफ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है।

और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मसला आने पर फौरन किसी से बात नहीं करते, दिल में रखते हैं, सोचते रहते हैं और फिर वही छोटी सी बात बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए अपने गिर्द ऐसे लोग ज़रूर रखिए जिनसे आप बात कर सकें, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई वालिदैन, कोई उस्ताद, कोई ऐसा शख्स जिस पर आप एतमाद करते हों। कभी कभी मसले का हल फौरन नहीं मिलता, लेकिन बात करने से दिल का बोझ ज़रूर कम हो जाता है। अच्छा भाई, एक बार फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं जो इस वक्त सड़क पर हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़रा अपने पास आस पास देख लीजिए, रफ्तार मुनासिब है, सीट बेल्ट लगी है, मोबाइल फ़ोन कहीं हाथ में तो नहीं, अगर मोटरसाइकिल है तो हेलमेट मौजूद है, अगर साथ कोई बच्चा बैठा है तो महफूज तरीके से बैठा है। ये छोटी सी चेकिंग शायद आपको दो मिनट में ही ना ले, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा हो सकता है। और एक बात खास तौर पर नौजवानों से, सड़क रेसिंग की जगह नहीं है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, किसी से मुकाबला नहीं करना। जो शख्स आपसे आगे निकल के उसने कोई इनाम नहीं जीत लिया और आपने उसे पीछे छोड़ दिया तो आपने भी कोई मुकाबला नहीं जीता। असल कामयाबी यही है कि आप महफूज तरीके से घर पहुँचें।

ब्रेक से पहले एक आखिरी बात, मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत भी है और सहूलत भी, लेकिन इस्तेमाल करते हुए ज़रा ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है। ख़ासतौर पर बच्चों के ज़रूर समझाएं कि इंटरनेट पर हर वो शख्स नहीं होता जो ख़ुद को ज़ाहिर करता है। किसी अजनबी को ज़ाती मालूमात ना दें, घर का पता, स्कूल की तफसीलात, फ़ोन नंबर या ज़ाती तस्वीर किसी गैर मुतल्लिक शख्स के साथ शेयर ना करें। और अगर कोई ऑनलाइन शख्स डराए, ब्लैकमेल करे, अजीब बात करे या कोई तस्वीर भेजने पर मजबूर करे तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, फ़ौरन किसी काबिल एतमाद बड़े को बताना चाहिए। और वालिदैन बच्चे का मोबाइल चेक करने से पहले उसके एतमाद के साथ रिश्ता बनाएं, सिर्फ निगरानी नहीं रहनुमाई भी जरूरी है। चलें इतनी आगाही के बाद जरा माहौल को हल्का करते हैं। आखिर रेडियो फजा है जनाब, पूरा प्रोग्राम अगर हम सिर्फ नसीहतें करते रहें तो आप कहेंगे कि जरा सांस भी रहने दें। तो चले एक दिलचस्प सवाल, आपको दिन का कौन सा वक्त सबसे ज्यादा पसंद है, सुबह, दोपहर, शाम या रात? मेरे ख्याल में शाम का वक्त बड़ा खूबसूरत होता है, दिन की मसरूफियात खत्म होने के करीब होती है, लोग अपने घरों को वापस आ रहे होते हैं, चाय का वक्त, गपशप का वक्त, और इंसान को लगता है कि अब जरा जिंदगी को महसूस किया जाए। दोस्तों प्रोग्राम खत्म होने के करीब है तो एक छोटी सी बात आपके साथ छोड़ कर जाना चाहूँगा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, किसी को रोज़गार की फिक्र है, किसी को कारोबार की, किसी को बच्चों की तालीम की, किसी को मुस्तकबिल की, किसी को अपने घर की और किसी को अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी। लेकिन इस सब के दरमियान एक चीज़ ना भूलिए, इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपनी भी और दूसरों की भी। इसलिए आज घर वापस जाते हुए ज़रा आहिस्ता गाड़ी चलाइए, और अगर बच्चा सड़क के करीब नजर आए तो रफ्तार कम कीजिए, अगर कोई बुजुर्ग रास्ता उबर कर रहा हो तो इसे रास्ता दीजिए, अगर कोई मोटरसाइकिल सवार गलती करे तो गुस्से में खतरनाक अंदाज से ओवरटेक न कीजिए, किसी की एक गलती को अपनी दूसरी गलती ना बनने दें। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, मिलते हैं एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद।

इस धुन का ताल्लुक है इंडिया के खूबसूरत सॉन्ग मेरे साजन दुआ करना। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। ये सॉन्ग आपकी हसीन समातों की नज़र है।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: It's commercial time.
5: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.
1: It's commercial time.
2: Ohana, kai ka khushbu, gosht ki zaika, aur Peshawar ka mehman nawazi.
3: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
2: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
2: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
4: Peshawari Dera.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ऑल राइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं लड़के वापस से सुमित के साथ, कि आप लोग मेरे साथ और मैं आपके साथ साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बीच में एक तीसरी पर्सनैलिटी भी मौजूद है माजिद के साथ। गले में शदीद दर्द होने की वजह से शायद बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका उतना तो हम ज़रूर बोलेंगे। अब अपने हक के लिए भी नहीं बोलेंगे तो फिर भला किसके लिए बोलेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके साथ हैं काशिफ समीर, जो अभी आपको ज्वाइन कर रहे हैं।
0: बड़ा दुख हुआ ये जान करके, अभी ज्वाइन कर रहे हैं
1: क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था पर्सनल रीजन की वजह से।
0: ओके, यानी कि ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा।
1: हाँ जी, इधर पहुँचने के लिए भी ना आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ा।
0: राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। खैर जनाब, काशिफ और उस्मान आपके साथ साथ हैं और हमारा आपका साथ बड़ा खूबसूरत रहने वाला है, लेकिन उसके लिए आपका साथ हमारे तक पहुंचना ज़रूरी है, और साथ पहुंचने के लिए, साथ निभाने के लिए आप क्या करेंगे ये आपको काशिफ बताएंगे।
1: आप लाइव कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उसका नंबर नोट करते जाएँ 0115-7100971, और आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं www.radiofaza.co.uk, और एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आईफोन के लिए भी मिल जाएगी और एंड्रॉयड के लिए भी। रेडियो फजा 97.1 FM, तो ये तीन जो मेन चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप जो है फजा 97.1 को आप ट्यून इन कर सकते हैं।
0: जी हाँ जनाब, इस तीन रास्तों के अलावा एक चौथा रास्ता भी हमारे पास मौजूद है और उसको हम फजा डैब कहते हैं। अगर आप इस वक्त ड्राइव करते हमें सुन रहे हैं तो आप डैब पर भी हमें ट्यून कर सकते हैं। और रही बात एप्लीकेशन की, तो ऑफ कोर्स डैट आप प्ले स्टोर या एप स्टोर दोनों जगहों पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बशर्ते इंटरनेट आप बआसानी हमें सुन सकते हैं। radiofaza.co.uk पर जाकर आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुनेंगे, और ना सिर्फ हमें सुनेंगे बल्कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तमाम चार्जेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर आप एक बिजनेस मैन और आप चाहते हैं कि रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे, तब भी बड़ा ही आसान सा तरीका है, बस एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, या आप फिर आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर ही एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो आपसे रब्ता कर लेगी और आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में आपका पूरा साथ दिया जाएगा। सो आइए प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं खूबसूरत सी आवाज़। उम्मीद है कि इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करेंगे आप, और इस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। आपके साथ उस्मान खान और
1: आरजे काशिफ समीर आपके साथ साथ रहेंगे।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं था मरजानी है, ये काशिफ की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है।
0: ये भी ठीक है। जी हाँ जनाब, आज प्रोग्राम का थोड़ा सा हम प्रोग्राम का मूड जो है वो चेंज लेकर चल रहे हैं। आज हम पुराने और नए और रैप्स जो हैं वो सबको मिक्स करके खूबसूरत से मैशअप्स आपके साथ शामिल कर रहे हैं। और इसका आइडिया भी जो है, अगर तो आपको अच्छा लगा तो फिर मेरा था, अगर ना अच्छा लगा तो फिर काशिफ का था।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही, अभी पास्ट और जो प्रेजेंट है उसको लेके चल रहे हैं, जो जनरेशनल गैप है उसको ना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल काशिफ, मुझे लगता है आपकी आवाज़ काफ़ी कम जा रही है, आगे आपको थोड़ा सा नज़दीक होना पड़ेगा। नेड़े नेड़े आ डोलना, वो क्या गाना था, नेड़े नेड़े वस डोलना,
1: दूर पा में जाना।
0: दूर पा में जा नहीं है, अब वो कुछ यूँ है। जी हाँ, तो नए आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे, जिन लोगों ने अभी भी फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस यूज़ किया है। बनाने चीज़ उस्मान खान और काशिफ आपके साथ हैं। काशिफ, बताइए अगर नए आने वाले दोस्तों को प्रोग्राम में किस तरह शामिल हो सकते हैं।
1: हमारे पास जी तीन तरीके हैं, उनके एक जो है लाइव कॉल के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल आएगी आपकी तरफ से 0115710971, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं www.radiofaza.co.uk पे, और प्ले स्टोर से आपको जो है ना iTunes और जो है क्या कहते हैं इसको एंड्रॉयड की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी रेडियो फजा 97.1 FM की। एक ये तरीका कार आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक और तरीका कार है वाया डैब।
0: जी हाँ जनाब, ये चार रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर आपने हम तक आना है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, अगर आपके आसपास कहीं नॉटिंघम के इर्द गिर्द में आप रहते हैं और रेडियो की ट्रांसमिशन आप तक ठीक से नहीं पहुंचती, तो फिर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जानने वाला प्यारा जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं कोई खूबसूरत सा गीत, यानी कि आप हमें कहें कि हम उनके उनको एक खूबसूरत सा गीत आपकी तरफ से डेडिकेट कर दें, तो इसके लिए आप उन्हें कहिएगा कि वो गूगल पर जाकर सर्च करें radiofaza.co.uk। ये खूबसूरत सी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं जनाब, ये कोई एक आवाज़ नहीं है, इनू जहाँ की आवाज़ है और उनके साथ साथ और कौन हैं उनके साथ हैं जी, सिद्धू मूसेवाला भी हैं, और उसके बाद बोहेमिया भी हैं। तीनों को मिलाकर ये खूबसूरत सी आवाज़ एक बनाई गई।
1: 50 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसको क्लैब करके तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन लेके आए हैं।
0: सो उम्मीद है कि आप इसको जरूर इंजॉय करेंगे। और ये प्लेलिस्ट जो है ये खास तौर पे ड्राइव करते हुए हजरात के लिए है, जो लोग इस वक्त हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं और उनका सफर जो है बहुत लंबा है, तो लंबे सफर के लिए ये म्यूजिक बड़ा ही मजे का लगता है। क्या ख्याल है काशिम, जब कभी आप सफर पे जाते हैं और लंबे सफर पे जाते हैं तो आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं?
1: हम जी जो है ना तो बहुत ज़्यादा स्लो और ना जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट, किस्म का मीडियम जो रेंज है जो आज चल रही है इस रेंज का म्यूज़िक जो है वो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा जो है ना आपको रिफ्रेशिंग मूवमेंट्स देता है।
0: आपने मीडियम का नाम लिया तो मुझे पिज़्ज़ा याद आ गया कि मीडियम पिज़्ज़ा ही मज़े का होता है। हाँ जी, तो वो कब खिला रहे हैं आप?
1: बस इधर शो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम रेस्टोरेंट में ही जाएंगे।
0: लो जी, बैठे बैठे पिज़्ज़ा डन हो गया। अब जनाब इस पार्ट ऑफ जोक, तो आप लोग भी अगर चाहें तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बिल्कुल आज़ादी है आपको। बस आप नॉटिंघम से हैं तो आप चैपल हाउस आ जाइएगा, काशिफ आपको भी साथ साथ पिज़्ज़ा खिला देंगे। मैं तो खामा गई।
1: आजकल मसला ये हो गया कि आपके पास अभी जो ईरा चल रही है सम टाइम पैसों की प्रॉब्लम नहीं है मनी की, लेकिन साथ चलने वाले लोग बड़े काम हो गए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं।
0: ऑफ कोर्स है,
1: तो अगर आपने चार या छः दोस्तों को इकट्ठा करना है तो आपको 1.5-2 माह की प्लानिंग लगती है, तो फिर भी बड़ी मुश्किल होती है, एक आध फिर भी स्लिप हो जाता है।
0: ऑफ कोर्स है, ऐसा ही होता है, हर किसी के पास शायद मालो जर तो काफ़ी है, वक्त नहीं है किसी के पास। और कहते हैं कि आप अपनों के लिए वक्त निकालें इससे पहले कि वक्त आप अपने में से आपके अपने निकाल दें।
1: बिल्कुल ऐसे,
0: तो इस वजह से अपनों के लिए वक्त निकालते रहा करें, महीने में एक दफ़ा सही, हफ्ते में ना सही, रोज़ ना सही, लेकिन मंथ में ایک دفعہ تو آپ اپنے دوستوں کے لیے وقت ضرور نکالا کریں. اچھا ویسے یہ ایک اور بات ہے کہ جب تک آپ کنوارے ہوتے ہیں, جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تب تک آپ دوستوں کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں, لیکن شادی کے بعد اکثر اوقات ہنسی مذاق میں بھی یہ بات کاشف کہی جاتی ہے, جی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے بندہ لفٹ ہی نہیں کرواتا, بندہ ملتا ہی نہیں ہے, اور کافی مذاق بنتا ہے اس بندے کا. لیکن حقیقت تب کھلتی ہے جب اپنی شادی ہوتی ہے.
1: ہاں جی بالکل, ریالٹی پانی کے بیچ پہ جا کے پتہ چلتا ہے یہ کتنا گہرا ہے.
0: کتنا گہرا ہے. سو ہم پہلے تو طنز و مذاق کرتے رہتے ہیں اپنے ان دوستوں سے جو شادی شدہ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم خود شادی شدہ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً طنز و مذاق کے حقدار نہیں تھے, بلکہ وہ اس کے حقدار تھے. اس کو کیا کہتے ہیں, اپریسیشن کے حقدار تھے. جناب اگر آپ کا کوئی ایسا دوست جو شادی سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں کبھی نہیں بدلنے والا چاہے میری شادی ہو یا نہ ہو, اور آج شادی کے فوراً بعد آپ نے اسے بدلتے ہوئے دیکھ لیا ہے, تو ضرور اس دوست کو ٹیگ کیجیے گا, ہمیں بتائیے گا. ہم آپ کے اس دوست کے نام ایک خوبصورت سا ٹریک لگائیں گے جو کہ بالکل اس کی سچویشن پہ سوٹ کرتا ہوگا. کیا خیال ہے کاشف, خوبصورت سی آواز سنا دیجیے.
1: جی بالکل, ایک اچھا سا جو ہے ٹریک وہ ایڈ کرتے چلتے ہیں آپ کے لیے, اور اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کس کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فیسلٹی اویلیبل ہے, اس کے تھرو جو ہے نا آپ نے لائیو کال کر سکتے ہیں 01157100971, اور جو ہے آپ ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ.
0: آلرائٹ جناب, بالکل آپ میسج چاہیں تو کر سکتے ہیں, آپ کال چاہیں تو کر سکتے ہیں, کسی خوبصورت سی شخصیت کو کوئی بھی خوبصورت سا گانا ڈیڈیکیٹ کروانا چاہیں تو ہمیں بتا دیجیے گا. کاشف یہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں
1: آپ کی خدمت کے لیے.
0: جی بالکل آپ کی خدمت کے لیے. سو اس آواز کے اس پار ہوتی ہے, وہ لگاتے رہیے گا.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर, और जब आप कुछ वाकई यादगार खाना

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

जी हाँ जी, नमन सेकंड वेलकम बैक। आ चुके हैं लूट के। आप इस खूबसूरत सी प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर रहे हैं और इस प्लेलिस्ट के अंदर कभी कभार आपको मेरी आवाज भी सुनने को मिलती रहेगी।

0: जी हाँ सर, आप बात कर रहे थे कि इस खूबसूरत से प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर रहे हैं, मेरे साथ साथ काशिफ भी मौजूद हैं। काशिफ, आप दुखी दुखी सुखी क्यों बैठे हुए हैं?
1: दुखी सुखी जो इसलिए बैठे हुए हैं कि मेरे दो दोस्त हैं, वो एक 1.5 माह हो गया टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। तो कहीं जो है ना टूरिज्म का एक प्लान बनाया हुआ है, लेकिन सारी चीज़ें, सारी जो मतलब उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं, वो सारा कुछ है लेकिन दोस्त नहीं मिल रहे, तो टाइम नहीं निकाल पा रहे।
0: तो क्या ख्याल है, फिर आपको नए दोस्त बना लेने चाहिए?
1: तो वो भी, उनके पास भी टाइम नहीं होगा। असल मसला टाइम का है और किसी चीज़ का इशू नहीं है।
0: देखिए, ये मसले मसाइल तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपका बेहतरीन दोस्त वो होता है जब वो आपके साथ हो, भले ही आप कोई बात ना भी कर रहे हो, दोनों चुपचाप ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन वक्त अच्छा गुजरता जाए। और ऐसे ही दोस्तों को हम अपने कीमती दोस्तों में तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आज के दौर में हर किसी के पास शायद तमाम तर ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद होने के बावजूद वक्त नहीं है। हम लोग अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को उस तरह से लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, दोस्त आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, उनका अमल दखल। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है काशिफ, कि जब कोई भी ना हो तो आप ख़ुद अपने बेहतरीन दोस्त होते हैं।
1: तब खुद से मुलाकात होती है।
0: तो अगर आपको कोई दोस्त वक्त नहीं दे रहा तो आप खुद के साथ खुद ही निकल जाइए।
1: जाना जंगल में है ना, तो कोई मतलब इस तरह का कोई चीज़ अटैक करे तो कोई बताने वाला तो वो क्या होगा?
0: तो मतलब आप इसलिए बहस दोस्तों को साथ रखना चाह रहे हैं।
1: हाँ, रिस्क जो है ना वो बड़ा हाई है, तो उसके लिए जो है ना साथ किसी का होना बड़ा ज़रूरी है।
0: ये भी सही है जी। खैर, अगर आपको भी यही लगता है कि आपके दोस्त महज इसलिए आपके साथ होने चाहिए ताकि किसी भी रिस्क से लड़ा जा सके, तो फिर मेरा ख्याल है आप दोस्त ना बनाइएगा। इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये कि आप अपनी प्रोटेक्शन का खुद ख्याल रख लें, वो तमाम दर चीज़ें अपने साथ रखें जो आपके दोस्तों की जगह ले सकती हैं।
1: टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो ह्यूमन टच है और जो इंसानों वाली बात है वो कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती।
0: ये तो हकीकत है, लेकिन
1: इमोशंस का बड़ा हमारे मूड के साथ ना अटैचमेंट होती है।
0: बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मसला वही है ना कि मसरूफ़ इस कदर है कि करने को कुछ नहीं है। हमारे सारे सारे दोस्त जो होते हैं, अब या तो एक टाइम पे उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक जब टाइम को लेकर चलते हैं तो उस टाइम में शायद अपना टाइम ना मिल पाए। तो ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ लेकर चलना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन चुका है।
1: हमारे अगर लिसनर में से भी किसी को ये इशू है, अगर वो ये चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहता है और दूसरे लोगों के भी साथ, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, वो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर।
0: बिल्कुल, आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है,
1: आपके चल रही है,
0: दोस्त भी ऐसे हैं जो प्लान तो कर लेते हैं, वो एक दोस्त से दूसरे को कॉल की तो उसने कहा यार फलां जगह पे घूमने चलते हैं, कहता नहीं यार, कहते यार हाँ तो करना, बाद में कैंसिल कर देंगे, थोड़ी सी वक्त की खुशी।
1: बातों में भी खुशी मिलती है, प्लानिंग बड़ी अच्छी लगती है।
0: बिल्कुल, तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो प्लान करने के बाद मुकर जाता है, फिर जाता है और आपके साथ नहीं जाता, लेकिन प्लान बनाने में सबसे आगे वही होता है, तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं उस दोस्त को, उस दोस्त का नाम बता सकते हैं हमें, हम उनके नाम एक अच्छा सा ट्रैक करेंगे। उसके लिए करना आपने बस इतना सा है कि अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए, नंबर मैं आपको बताता हूँ, उस नंबर को नोट कीजिए। द नंबर इज 01157100971। इस नंबर को सेव कीजिएगा, व्हाट्सएप पर चाहिएगा कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हवा के दोष पे लहराता गुनगुनाता सन सन्नाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम, जैसे ही हमारे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमकाएगा, हजूर सुनते हुए तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। अगर आप तक रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन सकते हैं, उसके लिए radiofaza.co.uk सर्च कर लीजिएगा, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो प्ले आप हमें प्ले कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं डैप पर। जी हाँ, आपने फजा डैप ट्यून करना है और आप हमें सुन लीजिएगा। काका की आवाज़ प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जी हाँ जनाब, गाना तीजी सीट, काका की आवाज़, उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस आवाज के बाद होगी आपसे फिर से मुलाकात, रहिएगा बस हमारे साथ साथ। हम योर होस्ट उस्मान खान एंड
1: आरजे काशिफ समीर।

0: जी हाँ जनाब, आ चुके हैं वापस एक छोटी सी प्यारी सी जुनून मुनसिक में शुबे के उस पार। आई एम योर होस्ट उस्मान खान विद
1: आज काशिफ समीर।
0: और काशिफ का दिल बिल्कुल भी मुझे लगता है आज बोलने का नहीं है। काशिफ क्या बात है,
1: बोलने का दिल है लेकिन वो कहीं पे इंडल जुहे में।
0: देखिए कहते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सीखने से नहीं घबराते। जब तक आप सीखते रहेंगे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है, सीखना बहुत जरूरी है।
0: आपने अब तक क्या सीखा, अपनी जिंदगी से अब तक क्या सीखा?
1: जिंदगी से ये सीखा कि
0: चक्कर नहीं है
1: ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि कोई भी चीज़ है तो शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, जो कर रहे होते हैं वो बंदा कहता है यार क्या बात है,
0: बिल्कुल
1: बड़ी आसानी से कर रहा है।
0: बिल्कुल
1: जब आप उसके पानी में उतरते हैं तो फिर पता चलता है कि कितनी गहराई है, कितनी मुश्किलात है। तो जिंदगी में कभी भी सीखने का अमल खत्म नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेट्स सपोज लोग ग्रेजुएट करते हैं फिर वो किताब से रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत रैपिडली चेंजिंग हो रही है। तो एक वक्त आता है कि उसको उस डिग्री की वजह से जॉब भी नहीं मिलती। हमें सीखने का अमल जारी रखना पड़ेगा अगर हमने फास्ट पेस के साथ मूव करना है।
0: ठीक है, जिंदगी हर लम्हे में हम कुछ ना कुछ सीखते तो रहते हैं। हर आने वाला लम्हा जो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा के जाता है। मज़ेदार बात तब होती है जब हम उस सीखी हुई चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट उसका करें। जब हम वो कहते हैं ना कि किताबों का मकसद आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताना होता है, सिखाना नहीं।
1: जी बिल्कुल,
0: इंसान जो है वो खुद से है और माशरे से इंसान सीखता है। तो हम हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो बिल्कुल रोबोटिक लाइफ बन चुकी हैं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, फैमिली के साथ गुजारना, मतलब हम लोगों के पास कोई लर्निंग पॉइंट है ही नहीं। और अगर है भी तो हम उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उस सारी की एक राय को हम वेस्ट करते जा रहे हैं।
1: हमारा जो दिमाग है एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, आंख और कान जो है ना वो उसको जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जब हम एक सी रूटीन में चलते रहते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करना खत्म कर देता है। ये अपनी हमारी जो बॉडी होती है उसको उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर देता है। तो जब तक हम एक नया नई चीज, नया मंजर, कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं लेके आएंगे तो ये जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और एक मेंटल जो पीस है वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें जो है ना एक तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और हम इंसान जो बेसिकली है, हम जो है ना एक तो नंबर्स अपने अकाउंट में नंबर्स ऐड करने के लिए बिल्कुल पैदा नहीं हुए कि हमारे पास अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए। और हम बिल्कुल काम करने के लिए पैदा नहीं हुए
0: ऐसे ही
1: कि हम 24 घंटे या 15 घंटे की शिफ्ट लगाएं, 16 घंटे की शिफ्ट लगाएं। एक बंदा था तो वो कहता है यार, वो टैक्सी ड्राइवर था, एक सूटेड बूटेड बंदा आया वो कॉरपोरेट का। तो कहता है सर जी मुझे ये बताएं, मैं भी एक अरसा हो गया इधर, मैं अपनी किसी इंडिया या पाकिस्तान से आया हुआ हूँ, एशियन कंट्री से आया हूँ और इधर मेहनत कर रहा हूँ इतने घंटे, तो मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मैं पॉइंट्स भी कमा रहा हूँ, लेकिन वो जो मुझे चीज़ मिलनी चाहिए मैं सर्टिफिकेशन वो नहीं मिल पा रही, तो वो क्या वजह है? तो ये ज़िंदगी मतलब जो हम कमाते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है? वो कहता है यार हम जो अर्न करते हैं उसमें से सिर्फ हमारी ज़रूरतें 20-25% से या 30% से हल हो सकती हैं, लेकिन 70% जो चीज़ें हम अपनी पैसा या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको हम जिंदगी में देखना नहीं चाहते। तो बेसिकली आजकल जो लाइफ चल रही है, जो बर्डन बहुत ज्यादा आ गया वो आ गया कंपैरिजन की वजह से। यार उसके पास ये वाली गाड़ी है, ये वाले कपड़े हैं, वो किस शैम्पू, मतलब हर चीज का एक ब्रांडिंग आ गई है। तो जब से ब्रांड्स आए हैं ना तब से ब्रेन का जो सुकून था वो कि किसी ना किसी हद तक वो हमारी लाइफ से आउट होता चला जा रहा है। अभी तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसकी भी ब्रांडिंग आ गई।
0: ऑफ कोर्स डेट हर चीज़ की ब्रांडिंग है, लेकिन बात वही है कि ये हम साउथ एशियन जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर हम लोगों के जहनों में ऐसी चीज़ें चलती
1: नहीं, जो यूरोपियंस भी हैं, ये गाड़ियों के ब्रांड हैं। वो लेट्स सपोज हम जी वैगन की बात करते हैं, आम गाड़ियाँ तो सबके पास है, जब जी वैगन और जो लग्जरी कार है तो आती हैं तो इम्पैक्ट तो डालती हैं।
0: हाँ ऑफ कोर्स ये चीज़ तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर इन दोनों की रेशियो निकाली जाए तो हम साउथ एशियन जो है ज्यादातर इन चीजों
1: हाँ जी हाँ जी हमारी वो बिल्ट में ये है,
0: ये चीज है
1: इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो फैक्टर है हमें ज्यादा पाया जाता है।
0: ऑफ कोर्स, तो हमारा मकसद ये आज के प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस करने का कि हमें कम से कम इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। ये जो सबसे अहम चीज होती है ना, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है हम लोगों में, हम लोग वो हिर्स करने लगे, हसद करने लगे।
1: आप ना एक छोटी सी सजेशन है, कभी आप एनिमल प्लैनेट जो है या मतलब जंगल या जो मतलब आपके जानवर हैं उनकी लाइफ देखें, तो उधर कोई डिग्री नहीं है। शेर जो है वो अपने हिसाब से लाइफ गुजार रहे हैं, खरगोश है या कोई और मतलब है, उसने कभी पीएचडी नहीं करनी, उसने जो है वो कोई टॉप क्लास स्किल अक्वायर नहीं करना,
0: वो जो अल्लाह ताला ने जिंदगी का मकसद है,
1: एक सिस्टम बनाया, एक चेन बनाई है, तो वो तो उधर कंपैरिजन नहीं है। शेर ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ तो मैं पूरा जंगल खा
0: जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही जंगल में सुबह के वक्त दो जानवर जागते हैं, एक शेर और एक हिरन। शेर जागता है और उसे पता है कि अगर आज वो तेज ना दौड़ा तो वो भूखा रह जाएगा,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: और हिरन जो है वो जागता है तो वो ये सोचता है कि अगर आज मैं तेज ना भागा तो मैं खा लिया जाऊंगा।
1: बिल्कुल,
0: इस वजह से दुनिया वही है, जंगल वही है, बस हमें अपने तौर तवार को बदलने की जरूरत है।
1: मतलब लाइफ गुजार रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है कंपैरिजन वाली लाइफ है उससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी निकालना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: उनको एहसास हो कि हम एक इंसान है, इंसानी माशरे में रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशी जो है ना वो कंपैरिजन में नहीं है।
0: ऐसा ही है,
1: तो हमें टाइम निकाल के अपनी जात के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है कि हमें स्कूल किधर मिलता है, ढूंढना चाहिए।
0: आपको स्टार्ट ढूंढना चाहिए और हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नेचर क्या चीज़ है, नेचर से किस तरह जुड़ा जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों को जिनमें हम लोगों ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर ली है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को हम बताएं और वो इन चीज़ों को अच्छे से उन पर इम्प्लीमेंट कर सके और उनको ख़राब होने से बचा सके। खैर जी, गपशप इसी तरह रहेगी प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सी आवाज़। इस आवाज को इस बार होगी आपसे मुलाकात, रहिएगा हमारे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान
1: एंड आरजे काशिम,
0: यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे

0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Get ready to move.
4: It's all about the beat. Wow,
5: FM. Only Tune Super Hit Channel.
6: Fizz on 97.1 FM.

0: पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station.
6: That plays
7: foot tapping music.
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप गाने।

0: Yapır English or Arabic?
1: Fazan 97.1 FM.
0: Ho gaya na kamal.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Fazan 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप।
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music.
6: Fazana 87.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, North

0: एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
1: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

शफक कहते हैं किरणों को रेस और धनुक रेनबो महताब चंद्रमा घटाएं तो आपको मालूम है शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो, चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to 97.1 FM.

0: बीत जाए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल,
2: सुनते रहिए रेडियो फजान 97.1 FM।